0: శుభోదయం సింహపురి కార్యక్రమం మీరింతవరకు విన్నారు. ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం. సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార్ ప్రభాత్ వింటారు. అనంతరం 8:15 మార్నింగ్ న్యూస్ ప్రసారమవుతాయి. ఆ తరువాత 8:30 జిల్లా సమాచార లేఖ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की. इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा. अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा. 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न. सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की. और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है. श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है.
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था. एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है.
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
3: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं. उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया. श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की.
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है. और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
3: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है.
4: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा. और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं. 5 से 15 उम्र के

0: भारत अमरीका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की

0: आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
6: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
5: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
6: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं. हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
5: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
6: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है. और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
5: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
7: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years of Vande Mataram, celebrating its enduring legacy as a symbol of India's national spirit and pride. The relay witnessed overwhelming participation and response from the members of the diaspora, underscoring the deep emotional connect with the Tiranga. With Suparna's report, Payal Sharma for Akashvani News.
5: Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, has notified the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme Rules 2026. The scheme will come into force today. The last date for filing a declaration under this scheme is 31st of December this year. No declaration can be filed after this date. A report.
8: The Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 is a one-time voluntary disclosure scheme contained in Chapter 4 of the Finance Act 2026. It enables eligible taxpayers to declare certain undisclosed foreign assets, undisclosed foreign income, or undeclared foreign assets on payment of a specified tax or fee. The Income Tax Department has issued a comprehensive FAQ document on the scheme and rules as part of its continued effort to enhance taxpayer awareness and facilitate a better understanding of the scheme. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present on the occasion. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will launch Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Atal Bihari PM I beg your pardon, in the state today. The move is aimed at achieving universal health coverage and ensuring seamless access to quality health care for eligible citizens across the state. More from our correspondent.
9: West Bengal will become the 36th state to implement the scheme. Around 1.5 crore families are expected to benefit with cashless treatment of up to 5 lakh rupees per family per year. Ayushman Bharat cards will be issued free of cost to every eligible family member. A total of 1,307 private and 627 government hospitals in the state will provide treatment under the scheme. Beneficiaries will be entitled to scheme's benefit from 3 days before the hospital admission until 15 days after discharge. For those not eligible for Ayushman Bharat, the Mukha Mantri Shastha Bima Yojana will also be launched today. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
5: The JPSC-JSSC aspirants agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest programs over alleged irregularities in recruitment examinations. Here is a report.
10: As part of the next phase of the agitation, student leaders have announced that effigies of Chief Minister Hemant Soren and Congress leader Rahul Gandhi will be burnt across all 24 districts of Jharkhand today. They said that their protest had entered its 22nd day with their key demands still unresolved. The JPSC-JSSC Reform Munch has given the state government an ultimatum to take positive action by August 18th. The protesters have also, for the first time, demanded the resignation of Chief Minister Hemant Soren. They have announced a major protest outside the Chief Minister's residence on August 20th and said they would continue their agitation there if their demands are not addressed. The Reform Munch has said the agitation will be intensified in the coming days and will draw inspiration from the ideas and spirit of Bhagat Singh. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
5: The National Testing Agency, NTA, will release the provisional answer keys for UGC NET June 2026, CSIR NET, ICAR All India Entrance Examination for Admission and All India Competitive Examination for PhD programs today. In a social media post, NTA said the provisional answer keys will be published on its official website. It advised candidates to rely only on official communication from the NTA. Amrit Udyan will be open to the general public from today till the 15th of next month. The garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. A report.
11: The garden trail will cover several attractions including Balvatika, Plumeria Garden, Banyan Grove, Bonsai Garden, Babbling Brooks, Central Lawn, Long Garden and Circular Garden. Indigenous and native flowering plants known for their vibrant colors and ecological significance are a major attraction of the summer annual edition. Entry to Amrit Udyan is free for all visitors. However, visitors

0: Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanjay Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, डीबी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का, और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है, और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीबी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीबी एक्ट कहीं ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीबी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रो बोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहां वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह

0: रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं टीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: You were listening to a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme. We slip into a short break.

0: प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई है तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगे तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबराते हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आते हैं हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहां पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहां पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे में निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से फ्लैग करा देते हैं, उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी

0: साल की ही महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हो या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं, पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या है, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में है या फिर हमारे जो लोकल एनजीओ वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल जाती है। मैं आपको सब बताना चाहूंगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहां नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती है, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका सिंगल हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करते हैं या नहीं करते हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती है। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती है जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत लीजिएगा केस सीट पे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanjay Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: భారత న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం హలో అభిరుచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. హలో అభిరుచి కార్యక్రమంలో శ్రోతలు ఫోన్ ఇన్ ద్వారా నచ్చిన పాటలు కోరి వింటారు.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं

0: को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं एक रिपोर्ट
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है एनटीए ने बताया कि शेष तीन विषयों अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें सकलैन अख्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा महवेश रहमान आकाशवाणी समाचार रांची
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था श्री शाह ने यह बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़

0: और गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
1: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश

0: द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अताचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने केझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 270,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली

0: किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: దేశభక్తి గీతం విన్నారు. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. సమయం 8:45 కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఢిల్లీ నుండి వార్తా ప్రసారం.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया. भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया. 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार. पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट. यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत. महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की. और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू. पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे. अब समाचार विस्तार से. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है. श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
3: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े. आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की

0: व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
0: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
3: लगभग 3 किलोमीटर लंबी

0: यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
3: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49

0: और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
4: आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026,

0: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
1: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गुणवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: राजमाता पद्मावती और राजपुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में।

0: अर्पित होगी
1: और पत्नी दुर्गावती।
2: महारानी, महारानी प्रणाम। राजमाता
0: शाबाश दीवान आधार सिंह।
2: क्षमा चाहता हूँ राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
2: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है, हमारी आज्ञा है, उसे बंदी बना लीजिए।
2: जो आज्ञा राजमाता।

0: फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
2: बहादुरी,
1: महानता,
2: बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
2: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना, लेकिन
2: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा हैं, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो, क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजिए।
1: और इस थाल में तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
2: जो हुक्म महारानी साहिब है।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
3: वो ऐसा ही करता है महारानी। वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
3: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहाँ लेकर आओ।
0: जो आ गया महारानी।
2: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
2: जो हुक्म।
3: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
5: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
3: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
3: जो हुक्म महारानी।

0: स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
0: अगर आपने गवाह पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। अपना ले जा, कैदियों को कपास ढूंढने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: नहीं चुरत। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
2: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधा सिंह जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
2: महारानी दुर्गावती कहिए अलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जा सकते हो तुम। आसफ खां, जंग की तैयारी की जाए। कढ़ा पर तुरंत चढ़ाई कर, हमें कढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसे मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपे पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों,
4: अरे ईश्वर, गले में गिरा महारानी के।
2: अरे यमुना,

0: मुझे पालकी में रख कर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं महारानी,
1: इस जलालुद्दीन को तो

0: 마하니. 마하니.
1: 그건.
0: 하나님, 내 아빠 세워, 아다한생.
1: 아다한생. 살렸다에. 원 내게 아니라 이 예셜 이름 사트네이디라 삼네이디 기모 훈기 위셜 세나 아마리 따라 벌리에 이스길리 세베레기 오 우뚜슈트 무갈 무지 반디 바나하카르 미라 앞만 그리 이리지 미리 깔깔 아프니 하도세 무제 맷기우께 가두 달디지 무제 미르가티 대디지
0: 네 마라니 네 예 아다름 예 다스 아프니 하도세 कभी नहीं कर सकता मारा कभी नहीं हम आपको मारकर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे आप चलिए आप चलिए हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं चलिए
1: आधार से क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी नहीं रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी आधार सिंह जी यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है
0: महारानी महारानी छोड़िए मेरी कतार छोड़िए महारानी
1: आधार सिंह जी मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अच्छी ही है मात्र हे मेरी कड़ा माटी तेरी सदा ही जय हो जय पड़ोते
0: महारानी महारानी महारानी धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती धन्य
2: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई

0: जो आज भी जिंदा
1: है और सदियों तक जिंदा रहेगी। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर, सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीत के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely traveled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the 7 chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ओशित जाना।
1: Tonight, Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by ओशित जाना।
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत 3 ताल में आपत्त है।
1: Ritam Sarkar begins his guitar recital with Rag Malkos, with Alap, Jor and Jhala. The composition is set to Vilambit Jhaptal, followed by Drut Tee.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम सरकार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आवत है।
1: You are listening to Raag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Raag Megh. It begins with an alap and the composition is set to go.

0: आप रीतम शौरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आपत है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kaharwa Tal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani.

0: नमस्कार
1: आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं गरीबों महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा गरीब अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना